0: भी और भी आउट है भी कुछ थेनीस बाणबो इट्स अ ब्लैक फोर फ्यूजन विद अटेम्प्ट है अनरीडेबल गिव टीम सेकंड
1: Definitely you smell the bottom of it.
2: Beef, you know.
1: Why? Region 1, B101. 1000 in code 4.